तुद बिन अभर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ध्याव है हर ध्याव है तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तन टूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तन बहुरासी।

से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम पुर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई। तुद आपे पावे सोही वरतै जी तू आपे करह सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक।

संगरे आए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरिया सुरजू करे हो रक्षा। राख ले हम राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बबधरा, काल पाए शिवजू अवधरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो।

सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के बट बट की जाने, जा बुद करख करा करतारा, प्रजा दर्त दब दे अपार, जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत दे तर सब हो, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम।

तांको कार्य अनुमानत महामूढ़ कश भेदना जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन्न पिन्नत तेती तुमरा लखा न जाई पसारा के बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जे

दुष्टारिष्ट टरें तत्काल कृपा दृष्ट धन जहन हर हो ताके ताप दनक मोहर हो हृद सद कर्म सवोई दोष्ट शास्वस गन कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा।

गुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बिसारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारणा सबना गल्ला।

साहिब जी साचे साहिब सिउ मन मान्या सुरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे अनद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874।

संबंधित श्लोक पढ़ पुस्तक संध्या बाद इसको पहला श्लोक जिस अहंकारी की तस्वीर सतगुरां ने सिमल रुख के नाल दिती है। सिमल रुख के पत्ते फुल ते फल सारे फिक्के और किसे लिए आधार आसरा भी नहीं बनते। अहंकारी की औलाद भी अहंकारी भाव वह भी किसी का सहारा नहीं बनती और किसी टेक नहीं देती। साहब इस कहते हैं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चौ करमं। जे कोई मनुख वास्तविक धर्म के वह कर्म जानता हो जिहदे नाल ब्रह्म की प्राप्ति होंदी है तो उसनू ए कर्म फोकट जानणगे। फोकट तो मुराद है वो कर्म जिहदा मुआवजा कुछ भी ना मिले, वो कर्म जिन्हों कीतिया समा जाया होवे समा सफल ना होवे। वो कर्म जो जीवन का बोझ बन जाए जीवन के तनाव

गुरबचनी मन वेखिया गुरबचनी मन वेखिया शब्द मन किया गुरबचनी मन वेखिया शब्द मन किया गुर पूरे शाबाश है।

आगे सुख दूर दिया, आगे सुख दूर दिया, आगे सुख दूर दिया, आगे सुख दूर दिया, आगे सुख दूर दिया।

चंद्रित्य नमो नादनादि नमो पान पाने नमो बार बादे अनंगी अनामे समाति सरूपे परपंगी परमाते समाति भूते कलंकंग बनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरं परम हृदय नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रपाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो दंशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समातुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्दार दंगा गंगो घरता परं परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा आसद दाता दयालं अशेदीय पेदीय नामं कामं समास्तु ब्राजी समास्तास्तामं तेरा जोर चाचरी शंभ जले हैं थले हैं पीदा वे हैं प्रभु आजुआ दे सह पे सह इंपजंग प्रयात शंभ अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समास्ति नदाने नमास्तवं नरनाथे नमास्तवं परमाथे नमास्तवं गंजे नमास्तवं पंजे नमास्तवं काले नमास्तवं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजांत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समाजंग प्रसिजे एकृपालंग रूपे गोकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदार दिशदिग निवासी चरपट छंद दव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देपेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूहाल शांत तव प्रसाद आद रूपनाद मूर्ति जौन पुरुष पार सर्व मंत्र मान देवा बेवाद उधार सर्व पालक सर्व काल सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजी अवदूत रूप रसाल नाम ठाम न जा जा करु ब्रंग न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जा करु ब्रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैलु अनुराग नाम काम भीन पेखत तामू न जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदैव अंत दाहे एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खिल खिल अखिल खिल न अंत कुबर एक देव पे बिना जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सुजानी कह जेव तात्मात न जात जाकर जनम मरण विहीन चकर बकर फिर चदर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखे जग जापी जय जाप आद देवनाद मूर्त थापु सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व विशु रचो स्वयं पवकर्ण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सुपरम रहत भूतल खेश अंग रंग न रंग जाक जत पदना नाम गर्भ गंजन दुष्ट गंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी गान सत एक पुरुख बतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन पंगनातम एक पुरुख पारु सर्व लायक सर्व गायको सर्व गोप्रत पारु सर्वगंता सर्वहंता सर्वदेन पेखो सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग रेखो परम वेद प्राण जा कह नीत भागत नित कोट सिमृत प्राण शास्त्र नया भई बोचित मद पार छंद तक प्रसाद गुणगान उधार में महा पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस्दिन नाश आजन बाह शान शाह राजन राज पान पान दीवान दीव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बालु रंकन रंग कालन काल अनुभूत अंग आप अंग गतमित पार गुणगन उधार मुनगन प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड लिश्य कर्म दृश्य धर्म
Sarva Parana Adhyaya Anadanda Padhyaya Jajri Shandhu

गुणगणोदार मुनगण प्रणाम। गुणगणोदार महिमा पार आसन पंग पवन अंगन पव प्रकाश निस्दिन नाश आजन बादशाह निषाद राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंग काल कालन कालन भूत अंग अंग गात्मित पार गुणगणोदार मुनगण प्रणाम। निरपैने काम आत दुत पर चंड मित गद अखंड अलिश कर्म अदृश धर्म सर्वा पर नाढ़ अण गंड बढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंग नामे कामे बजंग प्रयाद छंद जदर जगर करदा जदर जगर हरदा जदर जगर दाने जदर जगर जाने जदर जगर वरती जदर जगर चदर चकर भरती चदर चकर भरती चदर चकर बाले चदर चकर काले चदर चकर बासे चदर चकर बासे चदर चकर माने चदर चकर दाने जाचरी संभ ना सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाये न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिष्ठा दिशा दृश कृष्ण भगवती संत प्रसाद कथते के अशज देश है के अभिज बेस है के अगंज कर्म है के अपंज भरम है के अभिज लोक है के अदित सुख है के अवधूत वर्ण है के विभूत कर्ण है के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुजा है के असुख वर्ण है के सर्व भरण है के सर्वंग करण के जागतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपान रूप है के आदो देव है के अपेव है के चतरंग भिन्न है के कह दीन है के रोजिर जागर ही मरहा कह के पाक बेहै के गैल गै के कामल कर

बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए जम पव आदि विकास रूप से जम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख भार या सिख संग्रो डोट जे दे उठो तुद बाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तो सरणी परे दिन के दोष दौता वै मरे पुरख जवन भग भरे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल कोई गवार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए दाएं सब काला दोटा रेष्ट डरें तत्काला कृपा दृष्ट धन जाय नहरो ताके ताप धन गमो हरो रिद सिद कर्मो सब होई दोष्ट शास्व सके न कोई एक बार जन तुम संभार काल वास्ते ताहि उबार जिन नर नाम तिहारु कहा दारद दोष्ट दोख दे रहा खड़ के मसरण तिहारी आप हाथ दिल हो भारी सर्वठार महो सहाई दोष्ट दोख दिल हो बचाई खड़ के मसरण तिहारी आप हाथ दिल हो भारी सर्वठार महो सहाई दोष्ट दोख दिल हो बचाई। राम कली महला तीजानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बण आईयां शब्द तंगा हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा कह ना ही कर तेरा करता तेरा सब किस है जिस दे सु पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन बसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहेब ज्ञान ही करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए बसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाज साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां वडियाइया कहे नानक सुनो संत शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभा गए कर सभा गए शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कर लागे कहे नानक दैन सखोआ सतकार अनहद बाजे साची लिवै बन देन माणी देन माणी लिवै बाजे क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नोर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कलेवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जन का मोह टुटा दिन का सब सच सवारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू दे सुजन पावे पावे तो सुजन दे जिसन और क्या करे बेचारिया एक परम भूले फिरे दे दे सिख नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पै निर्मल जिन्ना पाना पावे कहे नानक जस दे प्यारे सोई जन पावे आव हो संत प्यारे हो गत की करे कहानी गत केरी गित द्वारे पाई है तन मन धन सब सौ गुरु का हुक्म मन्या पाई है हुक्म मन्या गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संत हो कथ्यो गत कहानी ए मन चंचला चतराई कने न पाया चतराई न पाया कने तू सुन मन मेरिया हे माया बहुणी जिने परम पलाया माया दमुणी कने कीती जन ठगौली पाईया गुरबाण कीता दिस बिटो जन्मो मीठा लाया कहे नानक मन चंचलो चतराई कने न पाया ए मन प्यारिया तू सो सच संभाले हे कुटंब तू जे दिखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही दिस नाल क्यों चित लाई है
ऐसा काम मूले न कीचै यदांत पछताइयै सतगुरु का उपदेश सुन तू वै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया कने तेरा अपनाप तू जाने जी जन सा खेल तेरा क्या को आख बखाने आख है दा वेख सब तू है जिन जग तो पाया कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नारे मुनजन अमृत खोज दे सु अमृत गुर दे पाया पाया अमृत गुर कृपा के ने सचा मन वसाया जी जन सब तो दो पाए एक वेख पर सुन आया लभ लो अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जसन आप दुठा तने अमृत गुर दे पाया भगतां की चाल निराली चालां निराली भगतां के बेखम मार्ग चलना लभ लो अहंकार दा दिसना बहुत ना ही बोलना खन दुखी वालो निकिए दमार्ग जाना गुर प्रसादी जने आप दजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली ज्यों तू जलाए तिव चला स्वामी उर जाना गुण तेरे जिव तू जलाए तिव चला जना मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाहे सिहारा सदा ध्यावे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिव जलावे ए सुहिला सब सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया ए दिन कै मन वसया जंतरों लिखया आया एक फिरे कनेरे करें गल्ला गली करें ना पाया कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया भगत होए से जना जनि हर दया हर दया भगत होए गुरमु जनि दया हर दया भगत होए गुरमुख जनि दया भगत माता पिता कुटुंब सहत स्यों भगत संगत सबाइया कहिंदे भगत सुन दे भगत से भगत जनि मन वसाया कहे नानक से भगत जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजै बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा कद संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है कद संजम दोता जाए मन तो वो शब्द लागो अर्थ रहो चित लाए गाय नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो दार मैले जियो निर्मल सतगुर दे करने कमाणी जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तो मैले तिनी जन्म जो है हारिया हे तिसना बड़ा रोग लगा मरण मनो बिसारिया वेदा में नाम उत्तम सुसने ना ही फिर जम बेदा लिया गाय नानक जन सच तरिया कूड़े लागे हे तिनी जन्म जो है हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर दे करने कमाणी गुड़ की सोई पहुंचा ना ही मन सह सुनाणी जन्म रतन जी ने घटिया बड़े से बन जा रही कहे नानक जन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु से सन्मुख हो वह हो तो सन्मुख से कोई जीव रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय त्याई अंतरात्मा संभाले आप छठ सदा रहे परने गुरु बिना वरना जाने कोई कहे नानक ने सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुरते बिमुख हो गए बिन सतगुर मुक्त न पावे बाबे मुक्त न होर सब कोई पुछे किया जाए अनेक जो नि भरमे आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुर सब सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय न समाणी पीबो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजे होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख बखाणी हर हर नित करे रसना कहे कछु न जाणी चित जन का हिर लाया माया बोलन पैर बाणी कहे नाम सतसनाम सतगुरु वाज होर कच्ची बाणी गुर का शब्द धन है हीरे जद रड़ाओ सब से दी मन मिलया सच लाया भाव आपे हीरा रतन आपे जसनों दे बुझाई कहे नानक शब्द धन है हीरा जद रड़ाओ शिव सकता पो पाए कह करता पे गुमरताए गुमरताए आप वेख गुरमुख किस बजाए तुड़े बंधन उपमुक्त शब्द मन बसाए गुरमुख जिसन आप करे
ਸਿਵ ਸਕਤਾ ਪੋ ਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਪਿਓ ਕੁੰਬਰਤਾਏ ਹੁਕੁੰਬਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਵ ਜਾਏ ਪਾ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਈ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ੍ਰ ਪੁਨ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇਹੀ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁਦਾ ਸੁਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਆਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੀ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗਹਿ ਨਾਨਕ ਸੂਦਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਵਸਾਰੀਐ ਮਨੁੱਖ ਵਸਾਰੀਐ ਉੜਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਉੜਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ ਜੈਸੀ ਅਗਲ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਦ ਰਚਾਇਆ।

आनंद सुनो बट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते भवत सतगुर पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे सुनते।

संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानण नित साच तीर्थ मजना साच न लागै मैल क्या मल धोई है गुण है हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन न आवे आप पारस परम ध्यानी साचे साच साचे पावे आनंद अनदिन हरख साचा दुख गलवख पर हरै सच नाम पाया गुर देखाया मैल नाही सच मने तीर्थ नाम तीर्थ मीत मिला संगत मीत मिलाप पूरा नावण गावै गावण हार शब्द सुहावण साल आहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावै सहजन आवै बेणीता संगम सत सते आराध एक अंकार साचा नित देह चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कहे सब कोई के वड्याखी है हाँ मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच स गुर की साखी अमृत भाखी।

गुरु जी पौड़ी गुरु सतगुर के नाम पाया गुरु सतगुर के नाम पाया सतगुर बिच आप रखे सर पर कभी आपसे आया सतगुर मेरी अपना मुक्त है जिन विचों को हो चुकाया उस में हो विचार है जिन सच्चे सो जितनाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया सतनाम श्री महा

0: ओम छत्ते ओम शुरुवे ओम परिये ओम शुवे ओम जाति सिखोवे
1: ओम शुरुवे ओम छत्ते ओम गति कारण जाना ओम माया ओम छाया ओम कर कर जग पाया ओम विजय संदर्श जे ज्ञानी होना तक तुझे।

0: दाता हो दयाल, नाम दे हो मंगत जन को सदा रहूं रंग राता। ताई गुरु नानक साहब अपने आप नू भिखारी कहिंदे ने, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे ते खारी जियो। जे भिखारी यकीन न जाए ता घर विचो कुछ ना कुछ मिल जांदा। दूसरी उदाहरण भाई गुरदास देंदे ने, किन्ने कुत्ता मालक ने अपने दर ते रखे। कई वारी जदों मालक रोटी खान लगदा ते कुत्ता अपने मालक दी रोटी वल तकी जांदा, अपनी नज़र मालक दे खात विच रखदा, उधर देखी जांदा ते मालक कहिंदा इस कुत्ते नूं मारो, जदों रोटी खान लगना इहदी नज़र मेरे मूँह वल मेरे हत्थां वाले। ते भाई गुरदास कहिंदे ने, कुत्ते नूं कोई छोटा मारे ते कुत्ता इक्को दम चला नहीं जांदा, ओह मंजे दा चक्कर कट के फिर मालक दे सामने। कई वारी मालक इन्ना गुस्से विच आउंदा है, कहिंदा इस कुत्ते नूं कुट के बाहर कढो। मालक कुत्ते नूं सट्टां मारदा है पर कुत्ता पूंछ हिला के भी मालक दे पैर चुमी जांदा है। जदों घरों बाहर कढ़िया, अंदरों घर दा दरवाजा बंद कर लिया, कुत्ता बूहे विच बैठा है, मालक अंदर है। जदों दो चार घंटियां बाद मालक ने बूहा खोलिया, ओ कुत्ता फिर बूहे विच खलोता पूंछ पिया हिलांदा है। मालक दा मन तरस विच आ के कहिंदा है, हुण इस कुत्ते नूं कोई ठोकर ना मारियो, कोई दुरकारियो ना, क्योंकि मेरे तो बिना इहनू किसे दा आसरा नहीं। ओही कुत्ता मालक दे घर विच प्रवान हो जांदा है। भाई साहब कहिंदे ने, जे कुछ लैणा ही गुर प्रसाद तां कूकर दी तरह डिग पो। ताई भगत कबीर जी ने कहा, हम कूकर तेरे दरबार, भौंकै आगै बदन पसार। ताई ओ किन कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाओ, गले खमारे जेवरी, जै खिंचै तै जाऊं। ताई गुरु तेग बहादुर बख्शिश करदे ने, स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजत ने नित, नानक ए बिद हर म हर भजो, एक मन होए एक चित। भाई गुरदास कहिंदे ने, तीजी उदाहरण दित्ती जुत्ती दी। आपां सर्दी आउंदी है तां वी पैरां विच जुत्ती पा के पैरां नूं बचाने, गर्मी आउंदी है तां वी पैरां विच जोड़ा। जे किते पत्थर ते कंक्रीट ते मिट्टी ते तुरिए, कंडियां तों पत्थरां तों जुत्ती बचांदी है। पर कैसी हैरानगी दी गल, जेड़ी जुत्ती सर्दी गर्मी कंक्रीट तों बचांदी है, जदों किते सोहणे कमरे विच आउंदे आ ते ओह पैरां दी जुत्ती ला के दरवाजे तों बाहर रख देने। भाई गुरदास कहिंदे ने, उस जुत्ती तो कोई प्रेरणा लै, कहिंदी है मालका भावें तू घर विच वड़न लग्या मैनू बूहे विच ला गया, जितना चिर मर्जी तू घर विच रही पर मैं तेरे बूहे तो खिलना नहीं। जदों तू घरों निकलेगा सब तो पहला तेरे पैर जड़े ने मेरे विच प्रवेश करने। जे एक जुत्ती मालक दे दर ते रहे ते मालक दी रहमत लेंदी है सिखा, जे तू गुर प्रसाद लेना है ते तिन्ना गल्लां नू चेते रख। भाई गुरदास दा कबित है, आवत है भीख, जाके मांगन भिखारी दीन, देखत अधीन निराशो ना बिडार है, बैठत है जाके द्वार आसा कै बिडार स्वान, अंत करुणा कै तोर टूक ताए डार है, पायन की पन की रैत पर हरी परी, ताऊ काऊ काज उठ चलत समार है, छाड़ अहंकार सार होए गुर मार्ग में, कबू कै दयाल पग तार है। भाई मंझ गए इन्नी कालना काली के गुरु लंगर विच लकड़ां दी सेवा करदे रहे। सिदक नाल जुड़े एक दिन ओही लकड़ां लियांदे खूह विच डिग पए ने, सारी रात बतीत कीती। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह, अमृत वेला होया, भाई मंझ उधर याद भी जुड़िया ते धन गुरु अर्जुन देव रस्सा लेके गए। भाई मंझ नूं आवाज दित्ती बाहर निकल, कहिंदा पहला लकड़ां कढ़ियां। भाई मंझ नूं बाद विच कढ़िया, अज पहला समां सी कि गुरु अर्जुन देव जी ने आप रस्से नल खिचिया। भाई मंझ चरना ते ढह पिया, हजूर कहिंदे ने, देख मंझ कुछ मंग लै तेरी झोली भर देंगे। कहन लगा, दाता बस एक किरपा कर, अज तो बाद मंगण वाली बिरती खत्म हो जाए। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਜਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਇਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਇਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਬਰ ਵੀ ਜਾ ਸਮਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਤ ਪਾਰ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੀ ਹੋਗ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਾਈ।
1: ਕੇਵੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874. Yeah.

श्रोता जन, गुरु अर्जुन साहब प्रभु दे भगतां तो बलिहार होके अकाल पुरख दी उस्तत नित ए अमृत वचन उचारदे हन। हे प्रभु, आप जी दी भगती भी तुहाडी प्रेरणा नाल ही हो सकती है। निरसंदेह आप जी दी प्रेरणा तो बगैर कोई भी होर प्राणी आप जी दी भगती नहीं कर सकता। असल विच तुहाडा भगत भी ओही मनुख बनता है जिहड़ा तुहानू प्यारा लगता है, अते जिस दे मन नू तुसी अपने प्यार दा रंग चाड़ दिता है।

हे प्रभु तुहाडी कुदरत ताकत तुसी आप ही जानदे हो, कोई होर आप जी दी समर्था नूं नहीं समझ सकदा। हे मेरे प्यारे प्रभु, जिस मनुख उत्ते तुसी आप मेहर करदे हो, वही आप जी नाल सांस पाउंदा है।

श्रोता जन शब्द दे अगले दो बंदा अंदर गुरु अर्जन साहब जी आखदे हन, हे प्रभु जी, तुसी सब तो बड़े दातार हो, तुसी सब तो बड़े स्याने हो, आप जी दे बराबर कोई होर दूजा नहीं है, तुसी सब ताकतां दे मालक हो, तुसी मेरे खसम हो, मैं तुहाडी भगती करनी नहीं जानदा, तुसी आप ही मेहर करो तां ही कर सकदा हां। हे मेरे प्यारे प्रभु, जिथे तुसी वसदे हो ओ टिकाणा असा जीवां दे ज्ञान इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, आप जी दी रजा विच तुरना बड़ा औखा काम है। हे नानक, आख हे प्रभु, मैं तेरे दर ते डिग पिया हां, मैनू मूर्ख नू, मैनू अणजाण नू, तुसी आप हाथ दे के बचा लवो।

0: प्यारे श्रोता जन, राजनीतिक जां सभ्याचारक ढांचे विच तब्दीली लियाउण लई मन दी दृढ़ता, सेवा भावना अते विश्वास दा होना जरूरी है। विश्वास दा बीज हर एक व्यक्ति दे अंदर है। इस विश्वास की उत्पत्ति सेवा भावना तो हुंदी है अते इना दोना गुणा तो ही जीव दृढ़ता धारण करता है।
1: साडे उपर निर्भर है कि असि इस बीज नु हरिया भरिया करके इसका फल भोगना है जा इस नु सुखिया दबिया रख दुखा विच जिंदगी भोगनी है।

श्रोताजन गुरु अर्जुन साहिब जी इस शब्द अंदर सानू समझांदे हन हे भाई जिस मनुख ने सिर्फ गुरु दा पल्ला फड़िया है होर सारे हीले छड दित्ते हन अते परमात्मा दे नाम दी ही दवाई वरती है उसके सारे दुख कलेश सारे पाप सारे रोग मिट गए हन उसका मन विकारां दी तपश तों बच के ठंडा ठार होया है

श्रोता जन ए सिख श्रद्धालु जितना चिर भी बंदरगाह अटके हर रोज नितनेम आशा की वार का कीर्तन करते सन।

0: श्रोता जन कौमां गाटा मारू एक शहीदी गाथा है अते हिंदुस्तान की आजादी के अंदोलन का मुढ़ इथों ही गर्म होया। इस भावना सदका ही देश की आजादी तक वक् वक् सिख लहर ने देश अते कौम की आजादी में अहम योगदान पाया।
1: हिंदुस्तानी हुक्मरान आजादी का सेहरा अपने सिर बन के अज भी राजसत्ता का आनंद मान रहे हैं। अफसोस है कि इन्हां लोकां ने आजादी परवानियां नूं बनदे मान सतिकार तो सदा ही वांझे रखिया। इथों तक कि इन्हां दे आजादी प्रति योगदान बारे भी सरकारी पद्धर ते कोई रिकॉर्ड नहीं रखिया।
2: किसी का सिता है कि हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय नूं इन्हां इतिहासिक लहरां अते परवानियां बारे कोई जानकारी नहीं अते अज भी इन्हां आजादी घुलाटियां दे पैरोकारां नूं इन्हां दी पहचान लई संघर्ष करना पै रहा है।
1: ऐसे ही आजादी की लहर विच योगदान पाउण लई देश पद्धर ते रेवोल्यूशनरी पार्टी दी स्थापना हुई। शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा अते मदन लाल डींगरा वर्गे महान देश भगत इसे मोडी मैंबरां विचों सन। इस पार्टी दा उद्देश अंग्रेजी हकूमत दा भारत विचों सफाया करना सी। अपने इन्हां विचारां नूं लोकां तक पहुंचाउण लई हफ्तावारी गदर अखबार गुरमुखी हिंदी अते मराठी भाषावां विच शुरू कीते।
2: बपर अकाली लहर जिसने खास करके दुआबे विच मुकाबले दी सरकार चला के अंग्रेजां दे नक विच दम लियांदा दी गदर अंदोलन तो प्रभावित सी। गुरुद्वारा सुधार लहर नरोल गुरुद्वारा साहिबाना नूं महंतां दे कब्जे विचों छुड़ा के पंच दे हवाले करन दी ही लहर नहीं सी, सगों इस लहर अधीन सिखां ने अंग्रेजां दे पिट्ठू महंतां नूं वंगार के अंग्रेजां दी शक्ति नूं भी चैलेंज कीता सी।
1: ननकाणा साहिब जैतो गुरु का वास दे मोर्चे दी फतेह ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ।
0: ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ।

कृपा गुरुद्वारे का संगत अज बज चुके हैं। थोड़ा समा पाठमाला जुड़िए। मैं माता में चरणों में बेनती करा थोड़ा शांति का दान बख्शन। तो आओ बड़े प्यार नाल।

टेल अ लेसन ए दृढ़ कर जीवन दे बारामा विचो ते नाम नाल जुड़े हो मनुख दा कोई काज अधूरा नहीं रहिंदा। हां इस गल ख्याल रखी कि जेडे काज ने ना उन्हां प्रति भी सोच ली क्योंकि वो गुणा नाल संबंध ने। इसलिए आख्या सी मैं तेनू कर्मा प्रति चेतन करना चाहना कद तक कर्म कमावने दोष ना कहूं जो क्योंकि काज तो ही कर्म बनता है। मनुख ने जेड़ा काज अपने सामने रखिया होंदा है उन्दे लई कर्म करदा है। जिन्हें धन कमाने का काज सामने रख लिया उन्हें वो जे कर्म करने ने बिजनेस करा कोई व्यापार करा ते जिन्हें धर्म कमाने नू अपने जीवन का काज बना लिया होवे उन्हें वो जे कर्म करने ने। इसलिए कहन लगे काज तू निश्चित करन लगे हो सोच ले पर मैं तेनू ये विश्वास दिवाना जेडे लोग नाम के सहारे काज करते ने भावे उन्हों का संसारिक काज होवे भावे परमार्थक होवे

पर नाम के सहारे हो गए। इसलिए आख्या ने कि देख जदो नाम के सहारे धुप भी आएगी, शीतलता के सामने धुप भी आएगी, तो फिर वो साड़ नहीं सकेगी, निग बन जाएगी। नाम नाल जुड़ के पदार्थ भी आएंगे, फिर पदार्थों की जहर तेन सता नहीं सकेगी, वो भी केवल निग बन जाएगी। इसलिए जिन जिन नाम ध्याया पहला विश्वास पहला सबक तिन के काज करे, ताकि मनुख जीवन विच प्रभु दे गुणा नालों नाम नालों ना टुक सके। अगली लाइन विच कहने लगे एक होर भी ख्याल करी, हर गुर पूरा आराध्या। निरंकार दे दो स्वरूप, सरगुण आप निर्गुण आप सरगुण भी हो, सरगुण निर्गुण निरंकार। रब है निर्गुण, गुरु है सरगुण। सामने दिखता रब का ही दूजा रूप, पवन गुरु है ना, इसलिए आखता साचे ते पवना भया। हुण कहण लगे मैं तैनूं जिथे नाम का फंक्शन दस्या ना भी वह हर कार्य लई शक्ति बनता है, उत्थे तैनूं गुरु का फंक्शन भी दस्या, ताकि तैनूं एक ख्याल होवे मैं गुरु नाल संबंध जोड़ के रखा। कहण लगे गुरु का

क्योंकि तेरा नाम ही मेरे जीवन दे हर सुखां दा एक पैगाम है। आओ अज बारह माह की समाप्ति हुई ते गुरु ने इस बारह माह दे तत्व विच सब तो पहला ए गल आखी जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सहे। अज कोशिश करियो ताकि टिके रहो आपां कीर्तन की समाप्ति तो बाद भावें एक मिनट लई एक बार नाम रूपी वाहिगुरु शब्द नाल जुड़ना है। सारिया ने मिल कोई रचना खाली ना रहे क्योंकि गुरु ने जिहड़ा तत्व दिता है ना वो इन्हां लफ्ज़ां विच ही दिता है। आओ आखिरी चुप पढ़िए।

पार ब्रह्म प्रभ भय कृपाल। जिस मनुख दे उते वाहिगुरु परमात्मा जी दयावान हुंदे ने, कृपा करदे ने। और इत्थे एक विचार कर लीए कि वाहिगुरु परमात्मा सारे जीवां दे उत्ते दया नहीं करदा। नहीं, जदों आपां सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार करदे हां ते वाहिगुरु परमात्मा तां जेड़े औगुणे आ रहे ने, मंद करमी ने, उन्हां उत्ते भी दया करदे ने। कलगीधर महाराज दे आपां रोज बचन पढ़दे आ ना, दीन दयाल दया निध दौखन देखत है पर देत ना हारै। वाहिगुरु परमात्मा तो दया करदा है पर उस दी दया दे पात्र किन्ने को जीव बनते ने। गुरु पातशाह जी कृपा करते ने ना, वाहिगुरु जी तू तो साडा भला सोचदा है पर असी तेरी कीती कोई भलाई की कदर नहीं जानते। बचन महाराज दा ना, तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। रब दा बिरद है कि वो दया करदा है। पर इत्थे महाराज कृपा करदे ने पार ब्रह्म प्रभ भय कृपाल। जिन्ना मनुखां दे उत्ते वाहिगुरु परमात्मा जी कृपालू हुंदे ने, दयावान हुंदे ने, वो कौन ने? जिहड़े अरदासां करदे ने, तुम करो दया मेरे साईं, ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याई। जिहड़े आखदे ने साडी समर्था नहीं कि असी अपनी इज्जत आप बचा सकीए, मालक साडे पड़दे तू ढक, असी तेरी चरण दी शरण विच आ। तुम समर्था कारण करन ढाकन ढाक, गोविंद गुर मेरे मोहे अपराधी सरन चरण। हमरो सुहाओ सदा सद भूलन, तुमरो बिरद पत ते उदरन। जिन्ना उत्ते वाहिगुरु परमात्मा दयावान हुंदे ने, उन्हां नूं जीवन दे अंदर प्राप्ति की हुंदी है। अगली पंक्ति दे अंदर महाराज कृपा कर रहे ने,

जो जन सेवे तिस पूरन काज दास अपने की राखो लाज। अपने सेवक की आपे राख है, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वे। फिर वो दुर्योधन की सभा वे ते भावे हंकारी सात संगत हर नाकस की सभा वे, वाहिगुरु अपने सेवकां दी लाज पत रखदा है। हर जी ए तेरी वडियाई, भगतां की पैद रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई। सतगुरु कृपा कर रहे ने, जिस मनुख उत्ते सतगुरु अकाल पुरख दयावान हुंदा, उसका सतगुरु नाल मिलाप हुंदा, ते जिसका सतगुरु नाल मिलाप हो जाता है, सतगुरु उसके सारे कारज सवार देंदा है, ते आखदा फिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। ते फिर अगे जप जप साधु भए निहाल। ऐसे मनुख जेड़े अकाल पुरख की कृपा दे पात्र बन जाते हैं, सतगुरु दे नाल मिलाप कर लेंदे ने, हमेशा सतगुरु की ओट लैके जप जप तो भाव सतसंगत जबान नाल तां असी गुरु गुरु करते रहिए, पर गुरु का हुक्म ना मनीए, गुरु की आग्या ना मनीए, ते फिर आनंद कोई नहीं मिलना, खुशी कोई नहीं मिलनी। बेशक असी रागियां नूं कह के शब्द अपने समागमां दे विच पढ़ा लैने आं भी भाई साहब जी पढ़ दिओ शब्द, लख खुशियां पातशाहियां, पर अगली गल सानू भुल जांदी है। जे सतगुरु नदर करे, हुण गुरु नूं जपन तो की भाव है, पढ़ो सतगुरां दे पावन बचन। महाराज तां आखदे ने तन वी निहाल हो जांदा है, मन वी निहाल हो जांदा है, जदों गुरु का सिख अपने गुरु नूं सामने वेखदा है। पर ए नहीं गुरुद्वारे आके सामने खड़े होके असी कहीए तन मन होए निहाल, जां गुरु देखां सामने, ते दूजा दा बुरिया चितवदे आं, निंदा करदे आं, असी गुरु नूं पासे हटा दीए। नहीं, जप जप तो भाव है हर वेले गुरु दे हुक्म दी पालना करनी। जे गुरु आखदा न हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा तां भरे, जां मुरदार न खाए, इस गल उत्ते पहरा देगे। जे गुरु आखदा है दूजे की बुरियाई करनी, निंदा करनी, चुगली करनी माड़ी है, ते ना करिए, क्योंकि अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवनी सुन्ना गुर नाओ, सतगुर सेती रतिया दरगा पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वत दे, जग में उत्तम कांडी है विरले कई के। जप जप साधु भए निहाल, जिन्ना ने गुरु दी ओट लई, गुरु नू जपया, वो निहाल हो गए, क्योंकि गुरु निहाल करन दी समर्था रखदा है। आपा पढ़ दे ना रोज, सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली, पंत जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली।